तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरी भौ रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

मेरा तन गुरु नानक पातशाह है। कलयुगी जीवन के उद्धार करने वास्ते जा रहे सोलह कला संपूर्ण फैलिया अनंत कला हो ठाकुर सर।

गर्व ना कीजे नानका मत सिर आली। करोड़िया तो केड़ी चीज का माण कर जवानी ए जवानी सदा नहीं रही, आउंदी है चली जाए। एक झूठा हुकूमत का माण कर दे। इस संसार च बड़े बड़े राजे महाराजे आए जिन्हों का नामो निशान नहीं है, माया का माण करदा है भी झूठा हुआ। माया ये तो चलता पानी ए माणवी की धर्मकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता, चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं। याद रख एक दिन पछता है। साहबा का पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने सुने, पत्थर वर्गा मन पानी है, काठी सिर तो रख दिती, दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह ने चरणा ते दस्या। रोज लग पातशाह मेरू बख्श लो, मैं पापी मेरे कोलो भुल हो गए, अपने चेहरे के दाग जेड़े ने तां दिखदे ने जे शीशे कोल जाइए, शीशे कोल ना जाइए तो पता ही नहीं लगता। इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हां दा पता तां लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए। महापुरुषों का जीवन साफ शीशा होता है। अज धन गुरु नानक पातशाह जी धर्मकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रही, भुब्बा मार के रोई जाता। कहता है पातशाह मेरे बख्श, अरदास कर रहे आओ आप भी करिए। किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है ते नाले पढ़ना, पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी संगत।

रो लिया थे। रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरणा रुतो पातशाह बख्श अदूर कह लगे मरदाने बख्शीए। मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनू पुछ के बख्श दो, ये तो तुहाडा बिरद है जो शरण आवे तो तंठ लावे ए बिरद सोनी सदा। तो हजूर ने अमे दृष्टि तकिया तो क्या करोड़िए फिर जप सतना संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन कोई तक दाड़ी बाणी पड़े नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेनू निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य आज माया भी कर सत्य हूं करोड़िया सेठ गल च पला पा के कहता पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं तुहाडी सेवा तुहानू प्रसाद छकावा दुध पिलाव। हजूर कह लगे क्यों मरदाने चलीए। मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पुछण वाली गल चलो हूं तुहाडा सिख बन गया कौड़िया। हजूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह। हजूर कह लगे मरदाने अजे नू सिखी दिती सिखी की है हुकुम ते जे हुकुम मनेगा तो फिर ही साडा सिख सिखी गल्लां विच नहीं गल्लां दी सिखी कमजोर सिखी दा स्वरूप की है उस वाहिगुरु दा हुकुम हुकुम मनिए होवे परवान तां खसमे का महल करोड़िए जो तेनू असीं उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करिए असीं आवांगे तेरे घर प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम दा पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह तो करोड़िए चरण ते कहते पातशाह मैं गरीब तेरी बख्शिश कर दिती है। हजूर कहन लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु दी जिस वेले बख्शिश दा समा आउंदा है फिर जिना संभाल लेता है वह पाए करोड़िए बख्शिश होते तो भी गुरु की बख्शिश बख्शिश वाला समाजन है बख्शिश तो सदी ही है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही आप जिन्हों के भागा बच्चे बस दो वेले आके आप कीर्त नहीं जुड़े जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शी से ही नागा नहीं पाएगा। चौड़िया ये मालिक की दात यह जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसे पास उड़ीक है ते कई गुरु प्यारे तुहाडे वर्गे भाई भाई कीर्तन दा अमृत पी तो ए दात गुरु की अपनी है। हजूर कहण लगी मरदानिया रवाब चुकी ते शब्द की अखीली तक पड़ी मरदानिया ने रवाब चुकया ते बाबे ने सोने गले च ये शब्द का की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: स्वभाव सही था सही। जो गुरु का उपदेश सहबा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश को निर्देश बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा। साडा ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले हर पल आते मिले और कैरी सात संगत जिथे होशकर दिया संगत ये गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरोवर साहिब है अमरीकन सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर अनुभाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक दा सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई ओदे कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो पर कीर्तन की समाप्ति अमृतवेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन कह दीजिए उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश द्वारा बरखुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेज शब्द आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जामी गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चियों सुखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा Thank you.

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हन। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसरत तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है,

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किमें प्राप्त करेगा। नंबर वन, देही नु सो, देही नु काड़, इस नु डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है, तो बाबा फरीद जी ने पूछा, महाराज आप जी ने की कीता, क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, फिर इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते इस देही नू सो दो, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनू देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया।

जस्ट वॉच देम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स को अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे ना, उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वॉच देम, सिर्फ उन्हां नूं देखना है। अपने विचार असवारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्हां नूं देखो, तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नूं करना है। अपने विचार असवारी कीजे, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनूं देखना है। जो तुसी देखोगे, थॉट्स नू देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल को ऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वद्दा है, अगा वद्दा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप दे विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग है। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे उतना उतने वो गैप्स वधते जाएंगे, जदों गैप्स लंबे होंदे जाएंगे तो उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करन वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए एक असी वंडर करते हैं कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वो है आत्मा, वो है वाहिगुरु जी की अंश, वो है वाहिगुरु जी की जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नूं देख रहा है, फिर असी उसनूं पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनैक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। सो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजे, अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो, तुहानू पता नहीं लगा किसी ना किसी थॉट दे फ्लो दे विच निकल गए हो, उदों फौरन वापस फिर वापस आओ, और वापस आके जदों ही कोई थॉट आवे मन किते जान लगे, अपने मन नू आ पंक्ति बोल देनी, केड़ी

बाजत बसंत और प्यार महेंडोल राग ये 11 रागों का गुलदस्ता 11 राग इकट्ठे आप जी ने सरवण किए हैं जो कि गायन विच ये बहुत कठिन हैं। तो सत आप संगत की आशीर्वाद सदका ही मेहनत करके यहोजी चीज़ा जो गायन कीतियां जांदियां हैं। तो सतसंग जी ये स्वरां का मिलाप है जो सत स्वरां नूं गुरुआ ने गुरु नानक साहब जी ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे गुरु साहबा ने सत सुरां दे विच गाया है। तो शरंदे दे नाल गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इन्हां सत सुरां विच कीर्तन किया सारे गामा पा दा निशा ये सत स्वर। तो इन्हां सुरां नूं गुणी जना ने विद्वान लोगों ने ऋषिया ने मुनिया ने पीरां पैगंबरां ने सारे ने इन्हां सत सुरां नूं गाया। एक विद्वान ने बहुत ही सुंदर लिखा है ये सत सुरां सानू कित्थों मिलियां हन पंक्षियों की आवाज तो सत सुरां सानू प्राप्त होईयां। सब तो पहला जदों विद्वानां ने साज सुर लभ्या है तो साज सुर कित्थों मिलिया उन्हां कहे मोर हूं की बाणी को सुधार खर जबान दिओ। जद मोर बोलिया जंगल दे विच तो उन्होंने मोर की आवाज नू साज सुर मन लिया सा बन दिता। मोर हूं की बाणी को सुधार खर जबान दिओ चातरक की आवाज से रिखब सुर भरी है। जदों चातर कपपिया बोलिया तो रे सुर लग्या तो विद्वाना ने रे बन लिया ये रे बन गई सा रे। चातर की आवाज से रिखब सुर भरी है अजा की आवाज से गंधार का उचार कियो अजा मैंने भेड़ है जदों भेड़ बोलदी तो गा सुर लगता है। अजा की आवाज से गंधार का उचार कियो कूंज के कुरलाप से मध्यम सुर भरी है जदों कूंज करलाउंदी है तो मध्यम सुर लगता है मान सुर लगता है। कूंज के कुरलाप से मध्यम सुर भरी है कोयल हूं की कूक हूं ते पंचम बनायो विद। जदों अंब दी डाली ते बैठ के कोयल कूकदी है ते फिर पंचम सुर लगता है। कोयल हूं की कूक हूं ते पंचम बनायो विद। दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है दादर मैंने डड्डू जदों डड्डू बोलता है ते दास सुर लगता है। दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो। गजराज हाथी रंगून मैंने चीख जदों जंगल दे च हाथी चीखदा है ते नी सुर लगदी है। माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो इतनी निर्बा जान सातों सुर कही है। विद्वाना ने यह सत सुरां इस तरह कहियां हन। तो सतसंग जी ये संगीत जो है इथों दे बच्चे सारे बड़ा कीर्तन करते हैं कीर्तन सीखते हैं। तो आप जी का सारे का फर्ज है इत्थे जो कीर्तन की लहर परंपरा चली है बहुत ही आनंद आता है जो बच्चे कीर्तन सीखते हैं क्लासीकल कीर्तन दे मन जोड़ते हैं। ये तुहाडा बहुत वड्डा उपराला है माता पिता का जो बच्चों कीर्तन दे नाल जोड़ रहे। आओ सिख संगतां वालों गुरु कलगीधर पातशाह जी के अमृत के बारे रहत के बारे हुक्म

पुरातन रीत आप दो मिनट लिए भी श्रवण करो और गुरु अर्जुन देव पातशाह जो अपनी बख्शिश कर रहे हैं पंच ताल दी बराबर दी सवारी दी रीत है।

जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया संत भक्त गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को

0: कसम बेनती कृपा कसम
1: बेनती शरण बेनती बेनती हर कृपा कर तू बेनती
2: इधर ही रे रे इधर
1: रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे

प्रभु जी दे मार्ग ते चलदियां चलदियां जग्यासु नूं इह समझ आ जांदी है कि हरी अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम ही उस लई सब तों वड्डी दवाई है। इसे लई प्रभु दा नाम जपण लई बार बार बेनतियां अते अरदासां करदा है अते मन विच अपनी गलती भी महसूस करदा है कि संसारक झमेलियां करके ओ नाम नहीं जप सकिया। इसलिए बेनती करदिया होया महाराज श्री गुरु अर्जन देव जी फरमान करते हैं, औखद तेरो नाम दयाल मोहे आतुर तेरी गत नहीं जानी तू आप करे प्रतपाल। भाव हे प्रभु मैनू समझ आ गई है कि केवल तेरा नाम ही मेरे लिए सारे दुखों की दवाई है। मैं अनजाण ने तेरी महानता नहीं समझिया, ऐ प्रभु तू आप कृपा कर ताके मेरा जीवन सदा तेरे लेखे लग सके।

कंस मत पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ खाए चंपो आज काल श्रु श्याम बहो और अच्छा मेरी तुम करो सिख्यु वार सिख संग करो दुष जिते उठवा तुत्पाता सगल मरेज करो रणकाता जे आसोचता सरनी परे तिनके दुष दुख दवै मरे।

0: जे दूजे पासों मंगी है, जे दूजे पासों मंगी है ता लाज मराई है, मोह दूजी नाही ठा
1: उतनू चोट जाइए प्रभु।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी दी अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असा निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे उमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वर्तीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजयाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेबे जर साहेबे जायदाद होवे मित्रा दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तो अनादि काल तो सारे मंगदे आए ने ते दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सर्रार, काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सर्रार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला, प्रगटाण वाला, इसम फाइल। ते सर्रार सिर वाहद सर्रार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन। सर्रार मीन्स बहुते भेद। जीवन दे अनेका ही पेता नू सरलता विच कर देने वाला कौन है? काशफ सर्रार गुरु गोबिंद सिंह, बाबा नंद लाल जी कहते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड़ियाई करते हुए बेअंतता दसते हुए वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने तू इतना वड्डा है के रोख रूहान की रोजी ना टारे। रोजी ही राज विलोक तराजक, रोख रूहान की रोजी ना टारे। जेड़े तेनु मनदे ने, तेरे प्रेमी ने, तेरी होंद दे तारनी ने, तस्लीम करने वाले ने, ओना दी ते गल छड़ दे। तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने, ओना दी ता गल की करनी है? ओना वल ता है प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है, पर तू ते एडा बेअंत है, एडा बेनियाज है। रोजी हिराज विलोक तराज कर, रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख मीन्स रुखियां, रूहान जमा है रूह दी। तू ता रुखियां रूहां नू भी ताजगियां देना है, रुखियां रूहां नू भी सुखियां रूहां नू भी पालदा है। जिन्हां विच लचक ना होवे, लचकदार लकड़ी नू दरख्त गजा दे जांदा है, जड़ां गजा दे जांदियां ने, हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है। पर एक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा, समझो कि मर गई, अकड़ गई। ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखीए ते कमाल दी गल है, इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है। जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा, उहदे विच लचक रहिंदी है। ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है, मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा। जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उहनू मुर्दा समझो, क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं, मुर्दा ही आकड़दा है। पर गुरु साहिब जी इत्थे कहिंदे ने सच्चे पातशाह तूं बड़ा बेअंत है, जो रुखे ने सुके ने जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने ते तों तेरी होंद तों इनकारी ने, उहनां नूं वी तूं अपने गैबी खजाने विचों वड मुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है। हवा एक छिन एक स्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए। धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेकां पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है, जो तेतो मुनकर ने तेरियां दातां भी लई जांदे ने, तेरियां बख्शियां भी मानी जांदे ने। हे मुनिम परमेश्वर तेरियां नेमतां भी मानी जांदे ने, ते तो मुनकर भी ने, पर फिर भी तो उन्हां दी परवरिश करदा जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने रोख रूहान की रोजी ना टार। तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज, श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे इस शब्द अंदर फरमांदे ने कि मैनू ते ओही वड्डा दाता दिसिया है, मैं हुण निश्चा कर लिया है कि दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी, ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा ते उन ते मंगके ही देना है। मंगत्या कोलो मैं क्यों मंगा, मेरे गुरु ने मैनू सोझी पवा दिती है, गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनू सोझी मिल गई है कि परमेश्वर ही वड्डा दाता है, ते जे ओनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुख दंत रसन कस जाए, इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी, हाजत नहीं रह जांदी। ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है। ते मैं हुण इस निश्चे ते पहुंचा हां, किथों मंगा हो, कौन है इस ते मुकाबले दा दाता? साचा साहिब है ते वड्डा दाता है, उसदे भंडारे अखुट ने। वाह वाह।
मोहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चाहता है मालिक मकान या मालिक दुकान कहता है मुआफ करो बाबा मुआफ करो बाबा, वो अगे टुर जाता है। सारे बाजार च गया मुआफ करो बाबा मुआफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन बड़िया बड़िया दुकाना सन पुश्त दर पुश्त चलन वालिया ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया तो सा फिर होया की है, जदों मैं दुआ कीती जदों इल्तजा कीती जदों खाली ठूठा अगे कीता ते उन्हें अगे कहा मुआफ कर बाबा मुआफ कर बाबा। इसे तरह मैं सारे घर दे अग्यों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ इदा कहंदे, मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहन नाल तुरदा गया, बाजार मुक गया घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे तइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा कम काज करके फिर आए फिर उथे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे फिर कम लग गए तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों नहीं? ओ पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मेनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने किसे निमंत्रण दिता है पे इथे अगे आ जा, तुसी तक कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं ता हुन तेरा दर मान लिया है तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मोहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उथे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नू भी ऐसा ही एक जगह आख्या ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है ओ करन कारण समर्थ हो कर दई है। आडीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोहतकित दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे उदो तक कई बारी तेनू शकां शकूकां दा शुभात दा शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपदे तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नू छड़ के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा धार लिया मोहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावेंगे।

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।